0: मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्द रहा।
1: नमस्ते।
2: पिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामान? அது பண்டிகை காலத்துல கோயிலுக்கு வெளியே வைப்பாங்க.
1: நகி பேட்டா
2: பேட்டா எங்க மாத்தறானுங்க, எல்லாம் மாச சம்பளம் தான், அதுவும் பொங்கலையும் புளியரையும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா.
0: ஓ கோண
2: யாரு அவரா? அவரு
3: நல்லாரு நல்லாரு, நான் மடப்படி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன்.
2: வேணு சாஸ்திரி, வேணு சாஸ்திரி.
0: அச்சா வேணு சாஸ்திரி?
2: ஆமா ஆமா.
1: இஸ் பச்சி கா பர்த்டே ஹே, பண்டிட் சாஹியே, பூஜா கரானா ஹே, பூஜா
2: பூஜா கரானா ஹே. இருங்க சொல்றேன்.
1: இப்படித்தான்
2: கோயில் பேச.
1: इस बच्ची का जन्मदिन है तो मंदिर से बोला पूजा करवा ले।
3: अच्छा, आप हमारे टेंपल में आए हैं, बहुत खुश हुआ।
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं?
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं। अच्छा बेटी, तेरी जन्मदिन है? क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान।
3: मुस्कान बहुत प्यारी नाम है। अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
4: तारीस पूसम।
3: ओ पूसम, वेरी गुड स्टार, शी विल बिकम अ वेरी बिग हीरोइन, तू तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी।
4: बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो शाचिनाथ टेंपल है।
4: Who is the main god?
3: Lord Shiva.
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे। ए वहाँ क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल। चलिए आप चलिए।
2: इल्ला मुली बेसरा
3: यार इवाला, इवंग वडनाटल अंदर का है, ये मंदिर का बड़ा पंडित है वेणु शास्त्री जी।
0: वेणु शास्त्री का?
3: हाँ जी।
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है।
1: बेल बॉय?
3: हाँ जी।
1: ये तो बैट बॉय है।
5: इन्हें पतिया बाटे दो सुलीर काम है।
3: आइए पूजा करेंगे।
2: பேட் பாயா? என்ன பேட் பாயின்ட்டு போறாளே அப்படின்னா? என்ன
5: அதாவது, இந்த உலகத்திலேயே ஒன்ன மாதிரி அயோக்கிய பய